0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: सिर्फ आप प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। जो भी गाड़ी है, यू हैव टू ट्रीट लाइक अ लंबोर्गिनी दिस मॉर्निंग।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: क्या हाल चाल है? इफ यू आर मेकर हाईलाइट्स रील आउट ऑफ योर 6 मंथ्स ऑफ द ईयर, व्हाट वुड इट लुक लाइक? आई एम श्योर देयर गोना बी लॉट्स ऑफ दीस रील्स पॉपिंग अप ऑन योर सोशल मीडिया फीड दिस मॉर्निंग। बाय गुड मॉर्निंग, 6:10 ऑन दिस 1st of July, स्टार्ट ऑफ अ ब्रांड न्यू मंथ, वेंसडे की सुबह, हंप डे। आज एक चीज जो आपको इग्नोर करनी है, दैट इज द ट्रैफिक आउट देयर, बिकॉज होना ही होना है यार। वेंसडे ट्रैफिक दे गो हैंड इन हैंड, बट द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सेड एंड द अर्ली मॉर्निंग रिक्वेस्ट आर ऑल्सो गो हैंड इन हैंड। व्हाट इज दैट वन सॉन्ग दैट रियली गेट्स यू अप एंड रनिंग, रिचार्जेस योर बैटरीज? देन लेट मी नो। 800-1062 इज द नंबर दैट यू कैन गेट इन टच विद मी, कॉल मी और यू कैन व्हाट्सएप मी 0543091062 पर। कमिंग अप इन अ व्हाइल, कॉकटेल 2 से लेटेस्ट सुपर हिट कॉल्ड जग से लाज, प्रीतम चक्रवर्ती का म्यूजिक, शिल्पा राव की आवाज। कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक
1: उठी बाबा।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड The Big Breakfast brought to you by Zulekha Hospital. Your health matters.
3: मैदान सिंह के खजाने का एड्रेस जरा जोर से बोले बे।
2: Get ready for a treasure hunt like no other. Indra Kumar, Bhushan Kumar and Ashok Thakeria invite you to the biggest family entertainer of the year, Dhamaal 4. Starring Ajay Devgan, Ritesh Deshmukh, Arshad Warsi and Javed Jafri. Directed by Indra Kumar. Releasing on 10th July. Distributed by Al Nisar Cinema Film. Powered by Big 106.2.
4: Think car rentals are expensive? Think again, because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
7: मॉर्निंग 6:22 ऑन द क्लॉक ऑन दिस वेडनेसडे की सुबह, 32 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी वेरी हाई, 75% विंड्स ब्लोइंग एट 14 किलोमीटर पर आवर, मोस्टली क्लाउडी स्टार्ट टू दिस वेडनेसडे मॉर्निंग, हाईज ऑफ 36 राइट नाउ, लोज ऑफ 32 डिग्री सेल्सियस।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: आराम से अपना ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस हे मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बजा दूं, गाना बजा दूं।
1: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।

व्हाट अ फैबुलस सॉन्ग दैट इज. रातों में इरशाद कामिल की आवाज तो नहीं, आवाज पैपॉन की, इरशाद कामिल के वर्ड्स हैं. गेट सो लॉस्ट इन द म्यूजिक दैट इज क्वाइट अमेजिंग. ईच एंड एवरी एपिसोड ऑफ दिस सीरीज इज रियली वर्थ वॉचिंग. सो जाकर अगर आप किसी यू नो ज्यादा स्ट्रेस वगैरह बढ़ गया लाइफ के अंदर, एक गजल ऑलवेज कम्स टू योर रेस्क्यू. पैपॉन फ्रॉम द लिविंग रूम, दैट इज द नेम ऑफ वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूब फीचर्स.

0: राइट ऑन बिग 106.2। अकलमंदी के काम मैं यूजुअली करता नहीं हूँ, मुझसे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पिछले साल ही मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाया।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: आई नो आई एग्री विद यू। मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसके अंदर। इट्स जस्ट दैट द डे इट वाज एक्सपायरिंग लास्ट ईयर, सो आई हैड टू डू इट लास्ट ईयर। आई जस्ट गॉट लकी, यू कैन से दैट। बिकॉज आपने सुना कि नहीं, रिवाइज्ड फीस है फॉर पासपोर्ट रिन्यूअल अक्रॉस द यूए, चाहे अबुधाबी हो या दुबई हो। एंड पासपोर्ट फीस इज इंक्रीज बाई एटलीस्ट 60%। एंड हियर आर द डिटेल्स। 36 पेज का अगर आप पासपोर्ट रिन्यूअल करवा रहे हो, 450 दिरम का आपको पड़ेगा नॉर्मल कैटेगरी में, विच इज 60% हाइक फ्रॉम द प्रीवियस 285 दिरम्स, और तत्काल में 900 दिरम देने पड़ेंगे। 60 पेज का अगर आपको पासपोर्ट चाहिए मेरे ट्रैवलर सेरेंडिपिटी #, द फीस गोना बी 630 फॉर अ नॉर्मल रिन्यूअल एंड 1080 दिरम फॉर तत्काल। कहीं आपका पासपोर्ट खो खा गया, डैमेज डूमूज हो गया, देन इट्स गोना बी स्टीपर। 900 दिरहम का 36 पेज के लिए और 1080 फॉर 60 पेज इन द नॉर्मल प्रोसेसिंग। तत्काल तो भूल ही जाओ, 1500 दिरहम तक का फीस जाती है। हाँ, माइनर्स 18 इयर्स ऑफ एज के नीचे, 18 इयर्स से कम, देन 36 पेज गोना कॉस्ट 325 फॉर नॉर्मल, विच इज ऑलमोस्ट 70% इंक्रीज, एंड 775 इन तत्काल। ऑल्सो 10% का डिस्काउंट हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर फ्रेश पासपोर्ट एप्लीकेशन चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8 इयर्स। एंड या अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, पुलिस क्लियरेंस, सरेंडर सर्टिफिकेट्स, ग्लोबल एंट्री, दैट्स ऑल्सो गॉन अप अराउंड 70-75%, अप 145 दिरहम्स, अप फ्रॉम 95 दिरहम्स। भाई इतने थोक के भाव में दाम बढ़ा दिए, हल्के हल्के बढ़ाओ ना। स्पीकिंग ऑफ विच, सुनीति चौहान विद हल्का हल्का कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल। दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सेड। गुड मॉर्निंग।

0: फिर मुझे लगता है कि हम लोग एज सिनेमा गोअर्स के बॉलीवुड फिल्म फैन स्पेशली वी हैव बिकम अ बिट यू नो रिवर्स साइकोलॉजी वाले लोग के, जैसे क्रिकेट में होता है ना कि कहते रहो अपने आप से कि नहीं नहीं मेरी टीम तो हारेगी, मेरी टीम तो हारेगी, मेरी टीम कि कहीं टीम जीत गई तो खुशी दुगनी हो जाएगी।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: ऐसा ही हम लोग ना स्पेशली मसाला फिल्म्स के साथ करने लगे हैं विद बॉलीवुड के। नहीं नहीं यार, अरे नहीं अक्षय कुमार और फिर 34 बॉलीवुड स्टार्स को एक साथ ले लिया, मतलब दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द स्क्रिप्ट, मतलब ये ऐसे ऐसे ही होगी, मतलब फालतू सी होगी, नथिंग एल्स टू डू, तब मैं जाके इस फिल्म को देखूंगा। एंड देन पीपल आर गेटिंग रियली सरप्राइज, सो रिव्यूज आई एम गेटिंग इज भाई फर्स्ट हाफ तो जेन्युइनली सीरियसली अच्छा है यार। You must have heard this review as well, right? Yaar, matlab first half actually acha hai. What do you mean actually acha hai? So I mean, so what is the opposite of actually? What were you expecting this to be? But yeah, Welcome to the Jungle is out at cinema halls. Isme, jaise ki maine kaha, 34 stars hain. Apart from Akshay Kumar, there is Yura Anna, there is Sunil Shetty also in this one. One person who's missing is of course Nana Patekar. So go and watch it. First half genuinely kaafi acha hai. But guess, of course, yesterday was that historic day when Etihad passenger rail started, right? Fujairah se lekar Abu Dhabi ke beech mein. Guess पहले ही दिन कितने टिकट बिके होंगे, हाउ मेनी टिकट्स वुड बी सोल्ड। इफ यू गॉट अ नंबर, इफ यू गॉट अ गेस, सेंड मी अ मैसेज ऑन आवर व्हाट्सएप 054-309-1062।
1: बिग 106.2।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नीनो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचे की धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: दे देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता. I'm a hustler, A1, lifestyle A1. आई मुझे ना सिखाओ घंटे पे फेम, एक ही बस एम, जो जलते हैं उन्हें और जलाओ. हिटरो की छातियों पे रख दीवे बाल के टोर मरावा के तिछोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से देहरादून दोनों हाथों उठा के हवा में बेबी घूम.
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है.

0: बादशाह विद बावला इज द 1st of July एंड काफी सारे लोग एक गुड न्यूज को लेकर काफी बावले हो रहे हैं.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: कितने दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना, आज पहली तारीख है भाई. एक तो या एक इनकमिंग आने वाला है इन योर बैंक अकाउंट या ऑलरेडी आ चुका है. कांग्रेचुलेशंस, स्टार्ट ऑफ अ ब्रांड न्यू मंथ, होप यू योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड. बट द गुड न्यूज दैट वी बीन वेटिंग फॉर 4 months, 4 महीनों के हाइक के बाद अब फ्यूल प्राइसेस फाइनली हैव ड्रॉप्ड हियर इन द यूएई. जुलाई प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस, सुपर 98 ड्रॉप्ड फ्रॉम 395 टू 3 dirhams and 40 fils, 340 पर लीटर. स्पेशल 95 383 से गिरकर 329 हो गया. एंड ई प्लस 91 फ्रॉम 376 टू 321. एंड डीजल भी सस्ता हो गया है, इनफैक्ट 433 से गिरकर 360 पर लीटर. एंड अगर आप मैथ करें देन महीने के अराउंड अगर मेहनत करो तो 200 दिरहम तक बच सकते हैं. थोड़ा चेंज पुंगी नहीं लगी. Congratulations on these fuel price drops, and we give you more reason to celebrate this summer, because coming up very soon is the big summer surprises. Keep it locked.
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती.
1: नाम है सिड, सिड on the Big Breakfast, only on Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Zuleika Hospital. Your health matters.
3: InsurersMarket.ie. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. InsuranceMarket.ae.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
1: Big 106.2. That's My Song by E.N.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: और अगर आपको लगता है इफ यू थिंक दैट कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव, देन दिस इज डेफिनेटली गोना पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। selfdrive.ae हैज द मोस्ट अफोर्डेबल कार रेंटल्स इन द यूएई राइट नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ। बिल्कुल सही सुना आपने, 899 दिरहम्स अ मंथ। And at this price, paying more just does not make sense, right? No ownership, no long-term commitment, no stress. Just pick your car and drive. Search kijiye selfdrive.ae or download the app now. Self Drive, your car, your price, your way.

0: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई। तुम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जादेरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: InsuranceMarket.ae 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. InsuranceMarket.ae.
3: Wow, your hair color looks stunning.
4: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
3: Yeah, right.
4: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
3: Really?
4: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
3: I'm buying it right now.
4: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
5: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
8: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
9: मॉर्निंग 8:14 ऑन दिस 1st of July। इट्स बीन अ पार्टली सनी स्टार्ट टू दिस वेंसडे मॉर्निंग। 33 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी स्टिल क्वाइट हाई 66%, पर विंड्स ब्लोइंग एट 13 किलोमीटर पर आवर, हाईज ऑफ 36, लोज ऑफ 32 डिग्रीज।
8: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: आठ बजकर 20 मिनट ऑन दिस 1st of July. इट इज नाउ टाइम टू प्ले.
1: Participate in the Bollywood Vacay Contest and win a family staycation. Big summer surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
0: Yep, it's on the top of everybody's wish list. Come summers here in the UAE. क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते क्या हो? तो सबसे पहला जवाब आएगा भाई हमें एक स्टेकेशन पे जाना है क्योंकि हमारी समर नहीं है ना. इफ यू डोंट गो ऑन अ स्टेकेशन एंड वी आर गोइंग टू बी फुटिंग द बिल एट द अमेजिंग रिक्सोस अलमायरिड इन रसल खेमा. आप जा सकते हैं फॉर दैट स्टेकेशन प्लस ऑन द स्पॉट 2 वॉक्स टिकट्स एंड एन F&B वाउचर एज वेल. तो बॉलीवुड वेके कॉन्टेस्ट खेलने के लिए आपको सिर्फ ए मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है. डू नॉट मैसेज, नॉट SMS, जस्ट व्हाट्सएप. दिस इज व्हाट्सएप बेस्ड कॉन्टेस्ट. सो BSS फॉर बिग समर सरप्राइजेस. टाइप कीजिए BSS स्पेस देकर अपना नाम एंड सेंड इट. कीप सेंडिंग इट टू 054-309-1062. That's 054-309-1062. Coming up in just a while. Lembar Husainpuri with Saadi Gali. Aur Bollywood Vekhe ki gali mein kya hai? I'm going to ask you a best of three. Yeah, you and that other person in conference with you. Best of three sawal. Sawal honge jude Bollywood plus vacation se. Some Bollywood song, some film that's been shot at a wonderful holiday destination. Ke baare mein, main aapse teen sawal poochunga. Best of three. If you perform better than the other person on the phone line, your name goes into the draw to win this unmissable staycation in the big summer surprises. Big 106.2.

0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: डांसिंग के खजाने का एड्रेस जरा जोर से बोले बे।
0: Get ready for a treasure hunt like no other. Indra Kumar, Bhushan Kumar and Ashok Thakeria invite you to the biggest family entertainer of the year, Dhamaal 4. Starring Ajay Devgan, Ritesh Deshmukh, Arshad Warsi and Javed Jafri. Directed by Indra Kumar. Releasing on 10th July. Distributed by Al Nisar Cinema Film. Powered by Big 106.2. The Big Jill.
2: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
3: Wow, your hair color looks stunning.
4: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
3: Yeah, right.
4: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
3: Really?
4: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
3: I'm buying it right now.
4: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
5: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
0: ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय सेल्फ ड्राइव डॉट एई.
6: दुबई फ्रेम से आती जाती सड़कें यानी कि D75 हेडिंग ईस्ट एंड वेस्ट, यू विल फाइंड कंजेशन. देयर इज एन इंसिडेंट आल्सो हेडिंग वेस्ट व्हेन यू मूव आउट, गो टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम दुबई फ्रेम और D75. बी केयरफुल आउट देयर. देन देयर इज E11 पर शेख जायद रोड गोइंग टुवर्ड्स स्ट्रेट सेंटर राउंड अबाउट फ्रॉम दुबई क्रीक, यू विल फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन देयर एज वेल. एंड 44 अलखेल रोड पर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस बे फ्रॉम D3.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
7: साला पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे. लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे. मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: It's 48 on the clock on the start of a brand new month. Officially, the first 6 months of 2026 are now over.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: अरे कल मैंने एक पोल क्वेश्चन डाला था बॉलीवुड रिलेटेड फॉर ऑल द फिल्म फैंस आउट देयर कि दो ऑप्शन दिए थे इनमें से कौन सी फिल्म यू मोर एक्साइटेड अबाउट इसका ज्यादा आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एंड द ऑप्शंस वर ऑप्शन ए सनी देओल अक्षय खन्ना की इक्का in which Sunny Deol and his 2.5 kilo ka heart is back at a courtroom drama in which Sunny Deol is a lawyer. That is option A. And option B, Awarapan 2, Imran Hashmi ki ye film jo upcoming uska official teaser was released a couple of days ago. And it's time to reveal the results on our Insta page. All of you, thank you very much for the overwhelming response that you've given. But you know what? It was split exactly down the middle. And just by one vote, Awarapan 2 has won that poll. So, Imran Hashmi ki fan following ki kya kehne yaar? Jaise wo K-pop mein hota na, army wala funda hai. Imran Hashmi has got like his own fan army yaar, I feel. So, yeah, Awarapan 2 has split. Even Sunny Deol, Akshay Khanna. Matlab, yaar, Tara Singh and Rehman Dakeed in a parallel universe ko तोड़ दिया पीछे छोड़ दिया इमरान हाशमी ने यार सो लॉट्स ऑफ सच अमेजिंग थिंग्स वी कीप पुटिंग अप ऑन आर इंस्टा पेज डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम वी आर 106.2 बिग एफएम दैट्स आर इंस्टा हैंडल फॉलो कीजिए इफ यू डोंट फॉलो अस ऑलरेडी क्या कर रहे हो यार 106.2 बिग एफएम इट इज योर लास्ट एंड फाइनल बोर्डिंग कॉल फॉर दिस मॉर्निंग फॉर द बॉलीवुड वेके कॉन्टेस्ट
1: Participate in the Bollywood Vacay Contest and win a family staycation. Big summer surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Rasal Khaimah.
0: बॉलीवुड की बातें हम लोग कर रहे थे बॉलीवुड का ही ये कॉन्टेस्ट होने वाला है और अगर आपने परफॉर्म किया बेटर देन दैट पर्सन हु इज प्लेइंग अगेंस्ट यू इन कॉन्फ्रेंस देन योर नेम कुड गो इनटू द ड्रॉ टू विन एन अनमिसेबल स्टेकेशन एट द रिक्सॉस अलमायरी रसल खेमा साथ में ऑन द स्पॉट क्या मिल रहा है आपको ड्रॉ के अलावा यू गेट टू वॉक्स टिकट्स एंड एन F&B वाउचर एज वेल इतना कुछ आपको जीतने के लिए क्या करना है कीप व्हाट्सएपिंग 0543091062 पर जस्ट टाइप आउट BSS फॉर बिग समर सरप्राइजेस स्पेस योर नेम एंड व्हाट्सएप दैट टू 0543091062 coming up. This is the Big Breakfast with me, Sid.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 9:09 as promised, it is time to play.
1: Participate in the Bollywood Vacay Contest and win a family staycation. Big summer surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almirid Ras Al Khaimah.
0: Sabse pehle, let's say good morning to Winston. How are you doing?
2: I am great, Sid. Thanks for calling.
0: Kuch ajeeb si awaaz aapki aa rahi hai. Are you in a cave or a tunnel? Or where are you?
2: I'm not in the cave actually. I'm at work outdoors.
0: You can say one and the same thing, work equal to cave.
2: yes, agree.
0: Alright, I got Anis on the other line. Anis, bhai, kya chal hai?
3: Good morning. Badhiya, badhiya.
0: हाँ, ये लग रहा है ना आदमी जिसने कि बहुत स्ट्रेस में है, काम पे है. अनीस भाई, क्या काम करते हो आप?
3: मैं एचआर में हूँ.
0: एचआर में है
3: जी.
0: मैं समझ गया था आप. आपकी आवाज में जो मूड झलक रहा है ना, बिल्कुल एचआर वाली बात है आपकी आवाज में. थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, बिकॉज इट्स टाइम टू गेट डाउन टू बिजनेस एंड इट्स टाइम टू प्ले द बॉलीवुड वेके. ओके, लेट मी एक्सप्लेन द रूल्स टू यू गाइज. ठीक है, मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा और गाने से जुड़े तीन सवाल पूछूंगा. ऑलराइट, दिस गाना इज गोना हैव समथिंग टू डू विद अ वेकेशन. ओके, और अगर आपको लगता है कि आपको जवाब पता है तो आपको अपना नाम बजर की तरह यूज करना है. यू गॉट शाउट बिग अनीस अगर अनीस भाई आपको जवाब पता है तो. और विंस्टन, इफ यू नो द आंसर यू हैव टू से बिग विंस्टन. ओके, वंस आई वेरीफाइड कि किसने अपना नाम पहले चिल्लाया उसको मैं मौका दूंगा जवाब देने का. अगर आपका जवाब सही हुआ, एक पॉइंट हो गया आपके खाते में. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स?
2: No.
0: All set?
2: Yes.
0: Ready to play Bollywood Vacay in the big summer surprises? चलो, आपका गाना है ये वाला.
4: दिल चाहता है,
2: कभी
0: ना. अरे भाई, सवाल तो पूछ ले दो. Winston, don't jump the gun, okay? This is the song, okay? Now the question is, ready? अब आपको अपना नाम चलना है. The question is, ये फिल्म में तीन दोस्त इस गाने में कौन सी जगह पे जाते हैं छुट्टी पे?
3: अनीस
2: विंस्टन.
0: अनीस बोलो.
3: गोवा
0: इज द करेक्ट आंसर. चलो, 1-0 इन अनीस फेवर, बट प्लीज शाउट बिग स्पेस योर नेम. ओके, आई एम गोना गिव इट टू यू दिस टाइम. विंस्टन, चलो बक अप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल चाहता है के डायरेक्टर का नाम बताओ. ही इज ऑल्सो फेमस. बिग अनीस.
3: फरहान अख्तर.
0: फरहान अख्तर इज द करेक्ट आंसर. और बाजी मार ली अनीस ने. कांग्रेचुलेशंस. ओह वाओ यार अनीस, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. मुझे उम्मीद थी जैसे आपने एचआर बोला, लेकिन आपने मस्त खेला यार, बिल्कुल सही.
3: नहीं, एक्चुअली ये फिल्म हम लोग फ्रेंड्स जाके देखे थे दो तीन बार.
0: कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा है ही नहीं देसी वाला जिसकी ये फेवरेट फिल्म नहीं है. बट विंस्टन कमिसरेशंस, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम. थैंक्स सो मच फॉर टेकिंग पार्ट इन आवर कॉन्टेस्ट.
2: थैंक यू.
0: टेक केयर. कीप व्हाट्सएपिंग ऑन 0543091062 पर. अनीस भाई, एकदम फ्रंट फुट डांसिंग डाउन द विकेट, छक्का मार दिया. आपका नाम ड्रॉ में चला गया टू विन एन अनमिसेबल स्टेकेशन एट द रिक्सॉस अलमायरिड इन रसल खेमा. साथ में ऑन द स्पॉट आपने जीतनी है दो वॉक्स टिकट्स और एक एफएनबी वाउचर. भाई, ओ माय गॉड, व्हाट अ स्टार्ट टू द मंथ, व्हाट अ स्टार्ट टू दिस 1st of July. यार, कैसा फील कर रहे हो?
3: बहुत बहुत खुश हूं. थैंक यू.
0: हाँ, और आपकी आवाज से लग भी रहा है दैट यू डिजर्व. अगर कोई यूएई में डिजर्व करता है टू गो ऑन अ स्टेकेशन टू रिलैक्स अ बिट, इट इज यू. अनीस भाई, क्या हो गया ऐसा? कुछ टारगेट वर्क आपके तो क्या, एचआर में क्या टारगेट होते होंगे?
3: टारगेट तो अभी फिलहाल नहीं है. हाँ. तो कुछ बढ़िया चल रहा है.
0: ऐसा तो नहीं होता कि टारगेट होता है कि 2-3 विकेट उड़ाओ इस महीने?
3: नहीं.
0: चलो यार, बी गुड टू ऑल द एम्प्लॉयज. हाँ, एंड कांग्रेचुलेशंस. कीप योर फिंगर्स क्रॉस कि जब ड्रॉ हो आप ही का नाम इस ड्रॉ में से निकले. लेकिन इन द मीनवाइल, एंजॉय योरसेल्फ एट द मूवीज एंड ऑल्सो दिस एफएनबी वाउचर. कांग्रेचुलेशंस.
3: Sure, thank you.
0: अनीस भाई हमारे आज के विनर हैं, ड्रॉ एंट्रेंट हैं, एंड दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग दैट्स हैपनिंग राइट नाउ, द बिग समर सरप्राइजेस में पार्ट लेने के लिए. करना क्या आपको भाई, मुफ्त के व्हाट्सएप ही तो भेजने हैं. BSS फॉर बिग समर सरप्राइजेस, स्पेस देकर अपना नाम आपको भेजना है और भेजते रहना है 0543091062 पर. द बिग समर सरप्राइजेस बी मेड पॉसिबल बाय आर प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स स्केचर्स. Title sponsor Papa John's, hospitality partner Rixos Almirid Russell Khema. Also don't forget ki kal subah ek bar phir ye contest mein khelne wala hu. At the same time, jahan par one more of you is going to get shortlisted in the lucky draw and also win movie tickets and an F&B voucher.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Insurers Market.
1: 9:21, time to play the big Bollywood quiz.
2: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Yeah, today is the 1st of July. One of my all-time favorite Bollywood movies' anniversary. It released exactly 15 years ago, 2011 mein, aaj hi ke din 1st of July, ye release hui thi, release anniversaries ki. I cannot resist celebrating. Aur agar aap apne aap ko Bollywood ka dhurandhar samajhte hain, अगर आप समझते हैं कि आप औरों से थोड़ी ज्यादा बॉलीवुड नॉलेज रखते हैं, तो मैं 5 सेकंड का सीन अगर इस फिल्म का सुनाऊंगा ना आपको, इनफैक्ट द अमाउंट ऑफ वर्ड्स दैट हैव बीन स्पोकन इन दिस सीन आर इवन लेस देन 5 सेकंड. इस छोटे से सीन को सुन के आप पहचान जाएंगे कि मैं कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूं. विच फिल्म हैड दिस?
3: हु इज इट? सर लॉन्ड्री.
1: या ये लॉन्ड्री वाला सीन कौन सी फिल्म में था? इफ यू नो द करेक्ट आंसर, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी अदर क्लूज. चलो, इट्स अ बिग बॉलीवुड क्विज, आई वांट यू टू फ्लेक्स अ बिट ऑफ बॉलीवुड मसल. सो टेल मी, अगर आप ये सुन के पहचान गए, आपको पता है कि लॉन्ड्री वाला सीन कौन सी फिल्म में था, गिव मी अ कॉल, लेट मी नो. 800-1062, दैट्स द नंबर, 800-1062. यू कुड विन 2 ओपन मूवी टिकट्स.

0: Hollywood.
1: With Big Ticket this summer, every ticket could spin big.
2: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
1: Our new big spin game could land you up to 1 million dirhams.
2: And 5 consolation prize winners of 100,000 dirham each.
1: Plus weekly cash e-draws all through the month.
2: Summer's hottest prizes await.
1: Buy now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
5: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
4: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
5: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
4: चलो चले अलराज।
6: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 89 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
0: Listen to her every day.
7: Mugembo! खुश हुआ।
8: चुना मैं न्यू ड्राइवर हो के कल हम एक जगह गए जहाँ पे पार्किंग बहुत ट्रिकी थी। अब मुझे बेसिक एंगल पार्किंग और गराज पार्किंग आ गई है, पैरेलल अभी तक मैंने अटेम्प्ट नहीं करी है, बट उस जगह की पार्किंग बहुत ट्रिकी थी। तो पहले तो पार्किंग मिल नहीं रही थी, आई वॉज वेरी हैप्पी कि बेइज्जती नहीं होगी मेरी फ्रेंड के सामने। फिर मिल गई, एक बंदा जो है चला गया जब हम निकल रहे थे। मैंने 20 मिनट कोशिश करी, मेरी गाड़ी वहाँ लगी नहीं। तो एज ए न्यू ड्राइवर आपने ये पार्किंग एंग्जाइटी फेस करी है? मतलब गाड़ी चलाना स्टिल ओके, बट पार्किंग स्पेशली न्यू पार्किंग्स गिव मी अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी।
9: So what I usually do is just find a very open space. You don't have to like find between park spaces. Try to go for the maximum space you can get, because as a new driver you can face a lot of challenges with the angles.
8: कल तो बिल्कुल open space नहीं थी, वो packed जगह थी और पीछे तीन गाड़ियाँ खड़ी थी और वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैंने उनकी property में हिस्सा मांग लिया। Oh, it was so bad. I can't tell you, my friend had to stand outside. आगे करो, पीछे करो। I said बहुत बेइज्जती होगी, यहाँ से निकलो।
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
10: It's 9:30 on the clock on this 1st of July. Let's start with 44 South. Aapko Alkuz वाले एरिया में, दुबई हिल्स वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको मिलेगी 3 से 4 मिनट की देर। देन स्पीकिंग अबाउट अलकूज, D72 पर आपको ट्रैफिक मिलेगा। फर्स्ट अलकूज स्ट्रीट इज ऑल्सो गेटिंग क्वाइट बिजी एज वी स्पीक। देन D3 गोइंग टूवर्ड्स बिजनेस बे, 44 अलखेल रोड पे आपको रोज की तरह 5 से 6 मिनट एक्सपेंड होंगे। D71 गोइंग टूवर्ड्स दुबई मॉल इज कंजेस्टेड, सो इज D75 एंड दिस इज गोइंग टूवर्ड्स दुबई फ्रेम। D78 पर उदमिथा के आसपास तो आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। देन देयर इज D89 जिसका ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है एयरपोर्ट एरिया में गोइंग टूवर्ड्स देरा। चलते हैं up north, 311 E11 heading south going towards Dubai from Sharjah, you'll find 5 se 7 minute ki der, and 611 is also getting a bit busy heading south going towards Al Awir.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
11: Hey,
12: namaste.
11: पहले आप वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं होंगे।
12: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा? आप बात बताइए।
11: मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा।
12: नहीं नहीं नहीं, आप तो खामखा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
11: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा, आ रहा है देखिए।
12: ये गुस्सा नहीं है।
0: Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: says the vehicles were clearly marked. The tennis legend Serena Williams has lost in the first round on her return to Wimbledon after a four-year hiatus. She was beaten by Australia's Maya Joint by 2-1.
1: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish, all in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour, made in Italy. Big 106.2.
2: जब वो चले तो सब देखते रह जाए और जब वो रुके तो वक्त बचाए और वो जब हंसेगी उसके सामने झुक के अपनी बाहें फैला के कहूंगा I love you.
1: When the clock strikes sass, she walks in. Fashion, films and fun. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: नहीं यार, जिस चीज का मुझे डर था वही हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है. ऑल दिस वाइल आई वाज थिंकिंग यार, वेदर चेंज हो रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है. यू नो, आई हैव नॉट फॉलन सिक इन अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड आई जस्ट जिंक्स्ड इट फॉर माई सेल्फ इवन बाय थिंकिंग ऑफ दैट. ऐसे लग रहा है कि अभी गला बड़ी जल्दी बैठने वाला है. या बिफोर यू क्रैक की गले को खड़ा कर दो, मोर जोक्स एनी मोर, लेट्स किक स्टार्ट दी आर. वेरी इंटरेस्टिंग. आई ऑलवेज थॉट कि ये जो हम बच्चों के राइम्स बनाते हैं या एड जिंगल्स बनते हैं, ये सारे ना दे हैव पोटेंशियल ऑफ बीइंग मेड इनटू सॉन्ग्स. एंड नाउ अ लॉट ऑफ डीजेज आर रियलाइजिंग कि हाँ भाई, इसमें तो बड़ा ही ज़्यादा पोटेंशियल है. वॉट एड जिंगल इज नाउ डूइंग द राउंड्स ऑन द इंटरनेट, जिसके रीमिक्सेस ड्रॉप हो रहे हैं क्लब्स में, पार्टियों में, इसके बारे में बात करेंगे इन जस्ट बिट. योर विद मी ज़ोहरा, दिस इज द बिग मिक्स. I keep you company all the way until 2 right here on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मिलाने मिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लगा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लो स्लो स्लो आई कैन
1: बिग 106.2
2: मैदान सिंह के खजाने का एड्रेस जरा जोर से बोले बे।
3: Get ready for a treasure hunt like no other. Indra Kumar, Bhushan Kumar and Ashok Thakeria invite you to the biggest family entertainer of the year, Dhamaal 4. Starring Ajay Devgan, Ritesh Deshmukh, Arshad Varsi and Javed Jafri. Directed by Indra Kumar. Releasing on 10th July. Distributed by Al Nisar Cinema Film. Powered by Big 106.2.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
6: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
7: 35 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड, मोस्टली इट्स गोइंग टू बी सनी, लेकिन थोड़ा पार्टली क्लाउडी हो सकता है। ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा फिलहाल 59% पे, हाइज आ जाएंगे सिर्फ 36 तक एंड लोज विल ड्रिप डाउन टू अबाउट 32।
6: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
8: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
9: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
6: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
2: सरप्राइजिंगली काफी कम ट्रैफिक आज रोड्स पे आ रही थी। 11 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर अगर आप हैं हेडिंग टुवर्ड्स S102 शारजा रिंग रोड, आपको मिलेगा वहां पे थोड़ा सा मॉडरेट ट्रैफिक। दिस इज अराउंड इतवार 1। उसके अलावा रासलखोर E44 पर अगर आप है वर्का 1 के जंक्शन के पास आपको मिलेगा एक कार एक्सीडेंट की वजह से 10 मिनट का डिले। उसके अलावा इफ यूर नियर अल मरकात वहां पे भी लाइक से मॉडरेट ट्रैफिक। एक और कार एक्सीडेंट हुआ है ऑन E66 अगर आप है वहां पे एक कार एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ है। दिस इज अराउंड दुबई क्रीक, बिकॉज ऑफ दैट एक 8 मिनट का डिले। एनी अदर ट्रैफिक अपडेट आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं 4305 पे। इट्स 10:45 ऑन द बिग क्लॉक, यू आर विद मी ज़ोरा।
0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
3: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
4: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूं।
0: ये है ज़ोरा on the big mix on big 106.2, the beat of Bollywood.

0: the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish, all in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour, made in Italy. Big 106.2.
1: जब वो चले तो सब देखते रह जाए, और जब वो रुके तो वक्त बचाए, और वो जब हंसेगी उसके सामने झुक के अपनी बाहें फैला के कहूंगा आई लव यू.
0: When the clock strikes sass, she walks in. Fashion, films and fun. The Big Mix with Zoe.

0: vibes and fun. The Big Mix with Zohra on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: जी हेलो हेलो गुड मॉर्निंग 11:01 जोहरा के साथ राइट ऑन बिग 106.2 दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड आई कीप यू कंपनी अंटिल 2 ब्रिंगिंग यू सबसे बढ़िया म्यूजिक बट उसके अलावा ऐसे कॉन्वर्सेशंस ऐसी चीजें आपको बताती हूँ जिससे इवन इफ यू आर फीलिंग लो ना कभी कभी मैं आपको कुछ ऐसा बता दूंगी यू सडनली स्टार्ट फीलिंग लाइक अरे मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ क्योंकि मुझे ये चीज आती है या ये मैं ये कर सकता हूँ नाउ अ पोस्ट ऑफ दैट नेचर हैज जस्ट पॉप्ड अप इन फ्रंट ऑफ मी व्हिच बेसिकली टॉक्स अबाउट हॉबीज है ना हॉबीज के बारे में तो सब बात करते हैं व्हाट्स योर फेवरेट हॉबी क्या करते हो टाइम पास के लिए नहीं यहां पे अगर आपकी सिलेक्ट सर्टन हॉबीज हैं दैट कुड जस्ट मेक यू स्मार्टर देन द रेस्ट एंड दिस हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन इमेजिन जस्ट बाय कीपिंग अ रैंडम हॉबी आपको किसी ने बोल दिया कि इस हॉबी की वजह से आप टेक्निकली और साइंटिफिकली बाकी लोगों से ज्यादा स्मार्ट हो क्या प्राउड फीलिंग होगी ना कि ये टाइम पास काम करने के लिए मतलब मैं स्मार्ट बन गया लोगों से ज्यादा सो लेट्स टॉक अबाउट दैट एंड इफ यू हैव एनी ऑफ दोज हॉबीज देन इट माइट जस्ट मीन दैट यू आर द स्मार्टेस्ट ऑफ योर बैच

0: I think this song was the only good thing about this movie. But can I tell you, this movie was, I think, the first, at least before this whole off-campus craze. Off-campus ka aapne padha hoga, suna bhi hoga. Amazon Prime pe jo naya show aaya tha, uske piche saari Gen Z bachchiyan, bachche jo hai, thode se crazy ho gaye hain. But I feel like this was the concept, right? Isme bhi to wahi hota hai that she tells him ki let's pretend to be boyfriend, girlfriend. Mujhe apne ex ko jealous karna hai ya unko ye, unka attention gain karna hai. Off-campus honestly starts the exact same way. I feel like hamare, you know, ye movies ko, shows ko utna credit milta nahi hai because humne itna, matlab, kya kehte hain, itni cheezon ko copy kiya hai, jab original हो भी जाते हैं हमें उस चीज का भी क्रेडिट नहीं मिलता.
1: द बिग मिक्स विद ज़ोहरा ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: लेकिन आपको मिलेगा, ठीक है, आपको क्रेडिट जरूर मिलेगा, जहां पे मिलना चाहिए मिलेगा. इफ यू हैव सर्टन वियर्ड हॉबीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टिपिकल द रेगुलर हॉबीज, यू नो, कि ये यहाँ गए, ये कर लिया, या यू नो, आपको ड्रॉइंग करने की आदत है, पेंटिंग का शौक है, डांसिंग, सिंगिंग, ये बहुत ही रेगुलर हॉबीज है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड वंस एंड रियली रियली वियर्ड वंस. कि अगर आप किसी को बोल दो मुझे करना पसंद है, पीपल जस्ट गिव यू द लुक लाइक हु डज दैट इन देयर फ्री टाइम, दैट्स सो वियर्ड एंड सो कॉम्प्लेक्स. ये कोई अपना टाइम पास करने के लिए इतनी कॉम्प्लेक्स चीज क्यों करेगा? बट अगर आप करते हो, इट एक्चुअली मीन्स दैट यू आर मच स्मार्टर देन द रेस्ट ऑफ द पीपल इन योर टीम. नाउ लेट मी टेक यू थ्रू अ फ्यू ऑफ दीज, ठीक है. सबसे पहले तो जगलिंग अगर आप करते हो या अगर आपको आता है करना, यू नो द बॉल्स विथ विच यू जगल एंड ऑल ऑफ दैट, एंटरटेनमेंट के लिए लोग करते हैं. बट इफ यू आर समवन हु नोज हाउ टू जगल, देन लर्निंग टू जगल, इट बेसिकली ग्रोज न्यू ग्रे मैटर इन योर ब्रेन विद इन वीक्स. लेकिन अगर आपने इसका प्रैक्टिस छोड़ दिया तो वो फेड भी हो जाता है. सो मेक श्योर दैट योर प्रैक्टिस इज ऑन, कि आप जगल करते रहो लाइफ में, काम के साथ और पर्सनल लाइफ के साथ तो जगल करते ही हो, बट इन प्रैक्टिकलिटी ऑल्सो जगल करते रहना. सेकेंड, दिस इज नाउ वेरी वेरी वियर्ड, आई डोंट थिंक कोई अपना टाइम पास करने के लिए करता होगा. ऑबिचुअरी रीडिंग, किसी की ऑबिचुअरी पढ़ना, लाइक अ स्ट्रेंजर्स ऑबिचुअरी एवरी डे, इफ यू रीड दैट यू बेसिकली अब्सॉर्ब एन एंटायर लाइफ इन अ फ्यू पैराग्राफ्स. सो इट रीसेट्स योर सेंस ऑफ व्हाट एक्चुअली मैटर्स, सो दैट कुड मेक यू स्मार्टर. तीसरा, दिस आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डू, ये काफी ज्यादा जो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं इनको करना बहुत पसंद है, ये विच इज़ रिवर्स इंजीनियरिंग. सो बेसिकली किसी चीज़ को लेके उसे पूरा तोड़ मोड़ के, उसे पूरा खोल के उसको रीबिल्ड करना. पीपल लाइक डूइंग दैट बिकॉज वो रिवर्स इंजीनियरिंग में इट एक्चुअली शोज यू नो हाउ मच यू कैन यूज़ योर ब्रेन टू ट्रेस कौन सी चीज़ कहाँ बिलोंग करती है, इसको कैसे जोड़ना होता है. सो रिवर्स इंजीनियरिंग डेफिनेटली अ वेरी वेरी हैंडी स्किल एंड अ गुड हॉबी, इट डेफिनेटली मेक्स यू स्मार्टर. चौथा, दिस इज फेलियर डॉक्यूमेंटेशन. दिस इज आई थिंक, मैं चिल्ला के बहुत लोगों को मैंने ये बोला है, ये आपको करना चाहिए. अगर आप अपनी अच्छी चीज़ों का ट्रैक रखते हो ना, मैंने आज अच्छा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, टू मेक यू फील गुड, मैनिफेस्टेशन बुक बनाते हो, मैनिफेस्टेशन बोर्ड बनाते हो, सब कुछ करते हो, देन व्हाई नॉट फॉर द रॉन्ग्स एज वेल, राइट? आपके मिस्टेक्स के, आपके फेलियर्स का भी एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, सो दैट यू डोंट रिपीट दैट. सो दिस इज बेसिकली कीपिंग अ जर्नल ऑफ ओनली योर मिस्टेक्स एंड एवरी फॉरेंसिक डिटेल. इट रिव्यूज योर ओन पैटर्न्स एंड सो यू कैन स्टॉप रिपीटिंग देम, basically making you, you know, a lot more intellectual than the others. Now, this is also another thing that काफ़ी लोग करते हैं, in fact, content creators भी करते हैं, उनका मजाक बन जाता है, but you should know that this is something very, very handy. Accent mimicry. Reading out loud while copying different accents. This is a real language method. It's basically called shadowing and it sharpens your ear, your memory and your speech all at once. ये सारी चीज़ें sharp होती हैं if you try to do this, which is accent mimicking. So, अगर ये आप accent mimic करने की कोशिश करो, कोई मजाक उड़ा रहा है, next time मैं ये पोस्ट आपको भेज देती हूँ, दिखा देना उनको, that actually makes you a lot more smarter than the rest of them. If you have any of these hobbies and if you feel like आप ये कर सकते हो, then you should feel proud of yourself because that actually sets you very different and very apart from the rest of the regulars.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस
1: ए मामू
0: सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
2: क्या बोल रहे तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
3: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
4: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
5: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
4: अलरास बोले तो
5: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
4: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: Listen to her every day.
6: Mugambo, खुश हुआ।
7: चुनाव न्यू ड्राइवर होके कल हम एक जगह गए जहाँ पे पार्किंग बहुत ट्रिकी थी। अब मुझे बेसिक एंगल पार्किंग और गराज पार्किंग आ गई है, पैरेलल अभी तक मैंने अटेम्प्ट नहीं करी है, बट उस जगह की पार्किंग बहुत ट्रिकी थी। तो पहले तो पार्किंग मिल नहीं रही थी, आई वॉज वेरी हैप्पी कि बेइज्जती नहीं होगी मेरी फ्रेंड के सामने। मेरे एक बंदा जो है चला गया जब हम निकल रहे थे, मैंने 20 मिनट कोशिश करी, मेरी गाड़ी वहाँ लगी नहीं। तो एज ए न्यू ड्राइवर आपने ये पार्किंग एंग्जाइटी फेस करी है, मतलब गाड़ी चलाना स्टिल ओके बट पार्किंग स्पेशली न्यू पार्किंग्स गिव मी अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी।
8: So what I usually do is just find a very open space. You don't have to like find between park spaces. Try to go for the maximum space you can get, because as a new driver you can face a lot of challenges with the angles.
7: कल तो बिल्कुल open space नहीं थी, वो packed जगह थी और पीछे तीन गाड़ियाँ खड़ी थी और वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैंने उनकी property में हिस्सा मांग लिया। Oh, it was so bad. I can't tell you, my friend had to stand outside. आगे करो, पीछे करो। I said बहुत बेइज्जती होगी, यहाँ से निकलो।
3: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
9: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
10: बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ।
3: ये है Zohra on the Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
11: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
12: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
3: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
13: 35 डिग्री सेल्सियस है बाहर, ह्यूमिडिटी फिलहाल बढ़ते हुए 59% तक पहुंच चुकी है, लोज आज जाएंगे 32 तक, हाईज जाएंगे 36 तक।
3: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 PM to 12 AM on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Missed your morning buzz?
2: उठा ले रे बाबा।
0: ये सुनो,
3: दिल्ली वैली से कितनी गालियां सीखी हमने।
4: एक फनी इंसिडेंट है इसका। वी वर डूइंग BSCIT दैट टाइम और हम फाइनल ईयर में थे एंड वी हैड बुक लाइक आफ्टर वाचिंग द ट्रेलर्स वी हैड बुक द फर्स्ट डे फर्स्ट शो एंड इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो भी मॉर्निंग शो था अराउंड 9 AM शो एंड एट दैट टाइम मुंबई यूनिवर्सिटी यूज्ड टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स इन द नाइट एंड ऑल ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लाइक 7-8 फ्रेंड्स हु वी हैड बुक दिस टिकट एंड बुक द एडवांस टिकट We all got KTs in our papers and the result was declared just one night before. So we were very afraid कि अभी घर पे कैसे बोलना है, movie तो कुछ भी करके जानी है. And then I said to my mom that I flunked and mom was like, तो mom ने वो बहुत खरी खोटी सुनाई कि तुमको अभी भी movies देखनी है, ये करना है, वो करना है. But still we all went for the movie in the morning.
3: और Delhi Belly picture चल रही है, उसमें इस वाले गाने का जो इफेक्ट है आप लोगों के लिए, ऑल यू केटियर्स, उसका इफेक्ट एकदम इंटू 10 हो गया होगा।
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM टू 10 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड बिग 106.2

0: the Big Clock, Hanji Zohra ke saath. This is the Big Mix. Good afternoon.
1: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: यार यू नो डेली बेसिस पे हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं बोलते हैं एंड इफ समवन ट्राइज टू करेक्ट अस कि नहीं इसका मतलब ऐसे नहीं ऐसे होता है लाइक अरे सेम थिंग पोटेटो पटाटो हम ये बोल के आगे बढ़ जाते हैं ना. ये पोटेटो पटाटो वाला जो है ना इसमें 19-20 का जो फ़र्क हम बोलते हैं वो 19-20 ही सही लेकिन फ़र्क तो है ना. कभी कभी वो एक चीज़ का भी फ़र्क ना मेक्स इट कम्प्लीटली डिफरेंट. नाउ देर आर सम डेली थिंग्स दैट यू नो रेगुलर बेसिस पे हम एवं यूज़ कर देते हैं विदाउट एक्चुअली नोइंग कि इन दोनों चीज़ों में यू नो काफ़ी बड़ा फ़र्क होता है. तो ऐसी कुछ चीज़ें मेरे सामने हैं जिसका मैं फ़र्क को बताना चाहती हूँ सो दैट यू आर नॉट करेक्टेड द नेक्स्ट टाइम एंड यू नो द करेक्ट थिंग टू यूज. नाउ बहुत ही कॉमन वाला जो मिस्टेक लोग करते हैं पॉइजन वर्सेस वेनम. हमें लगता है दोनों ही तो जहर है क्योंकि हमारे में मतलब जहर को जहर ही बोलते हैं उसको और कोई वर्ड नहीं दिया गया. बट पॉइजन एंड वेनम आर टू डिफरेंट थिंग्स. पॉइजन इज बेसिकली टच्ड और ईटन ये चीज को मतलब पॉइजन माना जाता है. बट वेनम इज इंजेक्टेड व्हेन समथिंग बाइट्स यू उस चीज का वो वेनम फैलता है दैट्स नॉट पॉइजन. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफ देम. वेदर एंड क्लाइमेट इसमें भी काफी फर्क है क्योंकि वेदर जो है वो डेली बेसिस पे बोला जाता है बट क्लाइमेट लॉन्ग टर्म मामले में बोलते हैं. इट्स अ लॉन्ग टर्म टर्म दैट इज यूज्ड. वायरस एंड बैक्टीरिया ये भी पता होना चाहिए. वायरस को है जरूरत होस्ट की बट बैक्टीरिया कैन सर्वाइव ऑन देयर ओन इंडिपेंडेंटली. जैम एंड जेली में भी फर्क होता है क्योंकि जैम जो है फ्रूट पीसेस के साथ बनता है बट जेली इज स्मूद जूस बेस्ड. सीमेंट एंड कॉन्क्रीट इन दोनों में भी फर्क है. काफी ज्यादा लोगों ने डिबेट किया इस चीज के ऊपर भी. बट सीमेंट इज ओनली द इंग्रेडिएंट. कॉन्क्रीट वो होता है जो फाइनल आउटपुट बनता है वो उसको कॉन्क्रीट कहा जाता है. सीमेंट उस चीज़ का इंग्रेडिएंट होता है सिर्फ. एक और बहुत ही कॉमन मिस्टेक एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल दोनों को लगता है सेम ही है यार. एलिगेटर क्रोकोडाइल एक छोटा होगा एक बड़ा होगा बट नहीं उनका जो फ्रंट पार्ट है विच इज़ द स्नाउट पार्ट एलिगेटर्स का वाइड होता है एकदम एंड क्रोकोडाइल्स का एकदम नैरो होता है. तो अपने बच्चों को स्पेशली ये फ़र्क ज़रूर सिखाना. उनको प्लीज़ ये पोटेटो पटाटो वाला मत सिखाना कि सेम ही होता है. ऑल्सो एस्ट्रोनॉमी वर्सेज एस्ट्रोलॉजी लॉट ऑफ people get confused and you know mix up the two. Astronomy is the study of science but astrology is belief based. Jo hum star signs wagera ko leke bolte hain wo astrology mein aata hai but astronomy is science. And last but not the least muffin versus cupcake. Now a lot of people still don't know the difference of it because ye bhi same cheez hi hai which more or less is the same. Isko bol sakte hain 19-20 ka hi fark kyunki muffins are supposed to be just denser taste wise and you know the way it is made it is a lot more denser uska taste and all of that. But cupcakes are a lot more sweeter and a lot more frosted. Like decoration ke saath us cheez ko banaya jata hai. Which is basically the difference between the two of them. Agar aapko bhi, abhi tak bhi aisi kisi cheez mein confusion hai and you still have some of these terms in your mind that you can't possibly to save your life even figure out the difference, then let me know. 800-1062. Maybe I could just help you out.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Missed your morning buzz?
2: उठा ले रे देवा।
1: Yes or no?
3: दिल्ली वैली से कितनी गालियां सीखी हमने।
4: एक फनी इंसिडेंट है इसका। वी वर डूइंग बीएससीआईटी दैट टाइम और हम फाइनल ईयर में थे एंड वी हैड बुक्ड लाइक आफ्टर वाचिंग द ट्रेलर्स वी हैड बुक्ड द फर्स्ट डे फर्स्ट शो एंड इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो भी मॉर्निंग शो था अराउंड 9 AM शो एंड एट दैट टाइम मुंबई यूनिवर्सिटी यूज टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स इन द नाइट एंड ऑल ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लाइक 7-8 फ्रेंड्स हु वी हैड बुक्ड दिस टिकट एंड बुक्ड द एडवांस टिकट We all got KTs in our papers and the result was declared just one night before. So we were very afraid ki abhi ghar pe kaise bolna hai, movie to kuch bhi karke jaani hai. And then I said to my mom that I flunked and mom was like, to mom ne wo bahut khari khoti sunayi ki tumko abhi bhi movies dekhni hai, ye karna hai, wo karna hai. But still we all went for the movie in the morning.
3: Aur Delhi Belly picture chal rahi hai, usme is wale gaane ka jo इफेक्ट है आप लोगों के लिए ऑल यू केटियर्स उसका इफेक्ट एकदम इनटू 10 हो गया होगा।
1: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 10 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।
5: लाइट से मॉडरेट ट्रैफिक है वर्का 2 से अगर आप जा रहे हैं टूवर्ड्स S102 शारजा रिंग रोड E311 शेख मोहम्मद जायद रोड पे आपको मिलेगा 8 मिनट का मॉडरेट ट्रैफिक वहां पे। E11 अगर आप इतिहाद स्ट्रीट लेकर जा रहे हैं नादा 1 की तरफ वहां पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक एज पर यूजुअल एटलीस्ट अबाउट 12 मिनट डिले ऑन दैट रोड। D62 गोइंग टूवर्ड्स D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट जंक्शन के पास हैवी ट्रैफिक 8 से 10 मिनट का वहां पर भी आपको डिले मिल जाएगा। उसके अलावा द यूजुअल लाइट ट्रैफिक आपको मिलेगा DIFC के पास ऑल्सो दुबई डाउनटाउन के पास एक कार एक्सीडेंट हुआ है विच इज कॉजिंग अबाउट 5-minute delay over there. Any other update, let us know 4305 pay.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE. Starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big 106.2.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 36 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड, आज हाईज इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। ह्यूमिडिटी बढ़कर 60% पर पहुंच चुकी है। लोज विल डिप डाउन टू अबाउट 32 अप्रोक्सिमेटली। यू विद मी ज़ोहरा, गुड आफ्टरनून।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 107.4 FM।

0: It's the Carl Car.
1: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
2: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: बिल्कुल सही यार. Good afternoon, Zohra के साथ हूँ. आप all the way until 2. फिलहाल हम बात कर रहे हैं about a big surprise for you. जो हमने आपको बताया है यार, big summer surprises में इस बार इतना बड़ा surprise आपके लिए, because we at Big 106.2 are giving you the ultimate stake on big summer surprises. Presenting a sponsor जो है Skechers है. Title sponsor Papa John's. Hospitality partner Rixo Salmairo Drasul Khema. This is your chance of winning a staycation and going checking out the stunning property which is Rixo Salmairo and Russell Khema. It is a perfect place. आपको बस relax करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है. You want to just go there. आजकल मैंने नए terms पढ़े हैं वैसे, travel terms, ये Gen Z लोगों ने बनाए, Gen Z बच्चों ने बनाया. Room rotting, it's called basically a term जहाँ पे आप जाते हो बस room में chill कर रहे होते हो क्योंकि आपको बाहर कहीं नहीं जाना. वो करना है तो मतलब है ही, the rooms are stunning over there. यहाँ पे जिस property की मैं बात कर रही हूँ, Russell Khema है तो you know it's going to be beautiful anyway. पूल पे आपको चिल करना है, आपको खाना खाना है बढ़िया, वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे. यू वांट टू जस्ट मेक सम ब्यूटीफुल मेमोरीज और क्रिएट कंटेंट, इस सारा कुछ आप यहाँ कर सकते हो यार. एंजॉय एंड बीट द हीट इन एब्सोल्यूट स्टाइल. प्लस योर चांस टू विन डेली प्राइजेस यहाँ पे वर्थ 500 दिरहम्स इंक्लूडिंग मूवी टिकट्स एंड F&B वाउचर्स, जो यहाँ पे यानी बिग 106.2 पे आपको मौका मिल रहा है. ऑल यू गॉट टू डू टू पार्टिसिपेट इज सेंड इन योर एंट्रीज. आपको एक तो नंबर वन सुनना है द बिग ब्रेकफास्ट एंड द बिग थ्रिल, ऊपर से आपको पार्टिसिपेट करना है बाय जस्ट sending in BSS space your name to our WhatsApp. BSS space apna naam WhatsApp pe hame bhejna hai, which is 054-309-1062. I'll repeat 054-309-1062. Yahan pe BSS space apna naam type karke bhej dijiye. And that's it yaar, your entry will be received and you could possibly be winning this amazing staycation. Big summer surprises presenting sponsor Skechers, title sponsor Papa John's, hospitality partner Rixo Salmairo Drasul Khema. This is only on Big 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Zulekha Hospital and Henna Speedy Easy Hair Color. Listen to her every day.
3: Mugembo! खुश हुआ।
4: सुना न्यू ड्राइवर, ओके कल हम एक जगह गए जहाँ पे पार्किंग बहुत ट्रिकी थी। अब मुझे बेसिक एंगल पार्किंग और गराज पार्किंग आ गई है, पैरेलल अभी तक मैंने अटेम्प्ट नहीं करी है, बट उस जगह की पार्किंग बहुत ट्रिकी थी। तो पहले तो पार्किंग मिल नहीं रही थी, आई वाज वेरी हैप्पी कि बेइज्जती नहीं होगी मेरी फ्रेंड के सामने। फिर मिल गई, एक बंदा जो है चला गया जब हम निकल रहे थे। मैंने 20 मिनट कोशिश करी, मेरी गाड़ी वहां लगी नहीं। तो एज ए न्यू ड्राइवर आपने ये पार्किंग एंग्जाइटी फेस करी है? मतलब गाड़ी चलाना स्टिल ओके, बट पार्किंग स्पेशली न्यू पार्किंग्स गिव मी अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी।
5: So what I usually do is just find a very open space. You don't have to like find between park spaces. Try to go for the maximum space you can get, because as a new driver you can face a lot of challenges with the angles.
4: कल तो बिल्कुल open space नहीं थी, वो packed जगह थी और पीछे तीन गाड़ियाँ खड़ी थी और वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैंने उनकी property में हिस्सा मांग लिया। Oh, it was so bad. I can't tell you, my friend had to stand outside. आगे करो, पीछे करो। I said बहुत बेइज्जती होगी, यहाँ से निकलो।
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
6: Hey, जल्दी हटा, तेरा खटा ना। चल हटा।
7: हाँ।
6: अरे जल्दी हटा यार, सुन।
7: हाँ हाँ।
2: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: Yes, a quick look on the road. E311 Sheikh Mohammed bin Zayed Road लेकर अगर आप जा रहे हैं towards Sharjah, Warka 2 के पास एक major car accident which is causing at least about a 20 minute delay on that road. This is crossing near Ribat 3, so try and avoid if possible. थोड़ा सा traffic आपको मिल जाएगा अगर आप E11 Sheikh Zayed Road पर है, Sukuk Street के पास light traffic है, just about a 5 to 6 minute delay on that road. Maidan Street पे भी थोड़ा सा heavy traffic मिल सकता है, but just for about 7 minutes. This is around Haptur City. Any other updates, you can let us know 4305. It is 128 on the big clock. You're with me, Zahra.
2: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
9: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
10: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ.
2: ये है Zahra on the big mix. On Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, fast track song of the hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: हाँ जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. जोहरा के साथ हो आप ऑन द बिग मिक्स. 132 हो चुके हैं. दिस इज ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae, द बेस्ट कार इंश्योरेंस इन टाउन. वो भी बिल्कुल सही प्राइस पे आपको यहाँ पर मिल जाएगा. एंड यू ऑल्सो सेव अप टू 30% बाय कंपेयरिंग द टॉप इंश्योरर्स जो यहाँ पे insurancemarket.ae आपके लिए करता है. जस्ट कॉल देम 800 Alfred 24/7 पे. दैट्स फॉर insurancemarket.ae.

सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे। Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: इतने प्यार से जब दो प्यारी आवाजें बोल देती हैं आपको कि जाइए ना सजना यहाँ से, तो मैं क्यों रुकूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इट्स 1:45 ऑन द बिग क्लॉक, मेरा जाने का वक्त हो चुका है। मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन आवर सोशल्स 106.2 बिग एफएम फॉर ऑल डेली फन कंटेंट एंड ऑल्सो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दैट यू कैन कीप अप विद 106.2 बिग एफएम। ऑल्सो मेरी आवाज़ मेरा अंदाज अगर आपको पसंद आया हो, यू कैन फॉलो मी ऑन माई हैंडल विच इज ज़ोहरा अमीन। आई विल नाउ सी यू टुमारो ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग। फ्राइडे यार नहीं, थर्सडे फ्राइडे, मैं कैलकुलेट करना भूल जाती हूँ आजकल, इतने सारे दिन चल रहे हैं। बट कल भी आऊंगी यार 10 से 2 के बीच में। मेक श्योर दैट यू ट्यून्ड इन। आई विल सी यू अंटिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड टू बिग 106.2। दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: Carnival, the last ride, king.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: Song of the Hour brought to you by Insurance Market. आपने सुना ए है रहमान की आवाज़. The track is क्या कमाल है from the film मैं वापस आऊँगा, जो बहुत कमाल कर रही है at the box office. Very nice, reasonably it's doing well. And जिन भी लोगों ने इससे मैंने पूछा है कि आपने फिल्म देखी है, सब ने बोला कि हाँ हमने देखी है, बहुत प्यारी फिल्म है. And in fact it's very heavy. Like if you can't consume like heavy screenplay, then that is not for you.
2: The Big Life with Ujjwal on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: In fact, I was scrolling through one of the reels as well, और उसमें एक बंदी ने एक किताब के बारे में जिक्र किया. इश्तियाक अहमद की किताब है, द पंजाब करके है ना, ऐसे कोई किताब है. ही इज अ स्वीडिश पाकिस्तानी गाय. ही बेसिकली स्पोक अबाउट द एंटायर पार्टीशन ऑफ व्हाट हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 1947. और उसमें एक बहुत खूबसूरत एक्सर्प्ट है जो वो पढ़ रही थी, और उसमें वो बोल रही थी कि उस बंदे ने उस ऑथर को, जो ऑथर है जिसने किताब लिखी है, उस बंदे ने, जो एक बंदा है उस जो एक लॉ फर्म में काम करता था, उसने इल्तिजा करी ऑथर से कि क्या आप मेरे पापा को मुझे ढूंढ के बता दोगे. वो 11 साल का था जब उनके पापा चले गए थे बिटवीन दिस पार्टीशन. ही वॉज अ 70-year-old man व्हेन ही रोट दिस. 70-year-old man व्हेन ही रोट दिस. दैट एनी हिस्ट्री ऑफ हिस वुड बी greatly appreciated. So that was the kind of, I don't know, मतलब बहुत मुश्किल एक्सप्रेस करना, क्योंकि मैं भी, मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं और मेरे जो दादी हैं, जो दादा हैं, वो सब यू नो दे कम फ्रॉम पाकिस्तान, लाहौर. एंड आई कैन ओनली अंडरस्टैंड दैट वाइज ऑल दिस मेक्स सो मच सेंस. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि क्यों देयर इज सो मच हैवी क्रस्ट ऑन पीपल यू नो व्हेन यू नो they get divided, and that's exactly what's shown in this film as well. So if you've got a strong heart, brave heart, then you watch it for Nasir Sahab and the longing of 78 years. Now coming back to food for thought, which is the food trail, I'll be throwing in a question right now. All you got to do is answer me very quickly. What am I talking about? India mein Pakistan har jagah khai jati hai. I grow on a tree in a tropical pod. My sticky dark pulp looks remarkably odd. I'm sour and sharp like a punch to the tongue. Used in dark chutneys since culture begun, but add enough jaggery, sugar and spice, and my brown tangy liquid makes street food tasty nice. Ye kaun hai chatakedar khatti cheez. 800-1062 is my toll free number, which is 800-1062. Dial in right now as I give you Shilpa Rao, and the track is Manmarsiya.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है? दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं। दिल आखिर तू क्यों रोता है?
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Al Mayrid, Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network.
2: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जानो।
2: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता
1: कल हो ना हो।
3: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: थिंक कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव, थिंक अगेन, because right now the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirham a month. Search selfdrive.ae or download the app now, because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae, your car, your price, your way.
1: Big 106.2. That's My Song by E.N.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: Song of the Hour brought to you by Insurance Market. आपने सुना उज्जवल खन्ना के साथ Big 106.2 पे आप सुन रहे हैं The Big Life. Theme hour में आज बात हो रही है first की. पहली बार आज 1st जुलाई है. So I just thought let's talk about songs, you know, which start with पहला. और अक्सर जब पहली बारी में खुशी होती है, you know, उस पहले इश्क की, तो उसका एक अलग मंजर होता है. And you know, there's someone who's talking about that first scent of love. You know, just have a listen to what she's saying.
2: कई बार हम किसी से मिलते हैं और उसे मिलते ही एक भावना महसूस होता है पहली मुलाकात में. तो उस भावना पे मैंने कविता लिखी थी कि जब भी उसको देखा मैंने, उसकी आंखों में देखते ही डूब गया. सोचा करता था कि कभी ना फिसलूंगा किसी पे, पर उसे देखते ही दिल मेरा फिसल गया. उसके अधरों पे जो शब्द ठहरे हुए हैं, वो मुझे किसी ओस की बूंद से लगने लगे. वो जो देख के मुस्कुराने लगे, उन्हें देख के ना जाने हम क्यों यूं संभलने लगे. सोचता हूँ उसका और मेरा मिलना मुनासिब था, वरना किस पे ही यूं दिल आता है इस कदर. सोचता हूँ उसका और मेरा मिलना मुनासिब था, वरना किस पे ही दिल आता है इस कदर. सोचता हूँ उसका मेरा कोई रिश्ता है पुराना, वरना कौन ही इतना जल्दी अपना ले लगता है. तो शायद पिछले जन्म की कोई कहानी अधूरी छूट गई है, जिसे मुझे इस जन्म में अंजाम देना है. शायद कोई प्यार की कहानी है, जिसे मुझे अपना अंतिम इनाम देना है. तो सोचता हूँ उसको जाके अपने दिल की सारी भावनाएं बता दूँ, पर जब भी उसके पास जाता हूँ, दिल से घबरा जाता हूँ. और उसकी आंखों में जब भी देखता हूँ, खुद को डूबा हुआ पाता हूँ.
1: Wow, beautiful, absolutely beautiful. और है ये कुछ, you know, जो पहली बार का infatuation, attraction होता है, उसका कुछ अलग ही मंजर होता है. And if you are falling in love for the first time, good for you guys. Go for it. Like I'm going for these tracks. The track is Pehli Pehli Baar Mohabbat Ki Hai. Sirf Tumse Gaana Kahe Yaagne Ki Awaaz Mein. Until 5 o'clock, aap sun rahe hain The Big Life, Ujjwal Khanna Ke Saath.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
4: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ, ओनली ऑन बिग 106.2,
1: द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
1: Fast Track Song of the Hour brought to you by Self Drive. अलका याग्निक की आवाज में गाना आपने सुना, देखा है पहली पहली बार. सारे गाने आज पहली तारीख पे हैं क्योंकि आज 1st of July है और हर एक गाना जो है उसमें कहीं ना कहीं पहला पहली चीज का जिक्र है. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट नंबर वन्स आर न्यूमरोलॉजिकली. इफ यू आर नंबर वन, आई एम नंबर वन बाय द वे. लेट्स टॉक अबाउट अस, लेट्स फैफ अ बिट.
0: द बिग लाइफ विद उज्जवल ऑन बिग 106.2.
1: मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में हर किसी की जिंदगी में एक नंबर वन का होना बहुत जरूरी है, नंबर वन वाले आदमी का या फिर औरत का, क्योंकि नंबर वन जो है ना वो अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. सन का नंबर होता है, जो कोर ट्रेट्स होते हैं उसमें होता है, वो बोल्ड होता है, एम्बिशियस होता है, सेल्फ रिलायंट होता है, हाईली इनोवेटिव होते हैं हम लोग. मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग यू नो अपने स्पेक्ट्रम में इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, दैट्स व्हाट पीपल आर. सो इसलिए बहुत सारे लोग, जैसे मैं तो टिका हुआ हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो ऐसे नंबर वन के होते हैं आप अक्सर उनको पाएंगे कि वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में आते हैं, यू नो बिकॉज दिस इंडिपेंडेंट, या फिर कंसल्टेंट का काम वो करते हैं. इंडिपेंडेंट आज़ादी चाहिए होती है बिकॉज दे नंबर वन, दे द पिनकल, यू नो, एंड दे रूल बाय सन, दे गवर्न बाय सन. ज़्यादा सुन के लेना अच्छा नहीं लगता नंबर वन वालों को, चाहे वो एक तारीख को पैदा हो, चाहे 10 को, चाहे 19 को, चाहे 28 तारीख को. जो पाइनियर विजन होती है, आप नेचुरल बॉर्न ट्रेल ब्लेजर हो जो इनिशिएट करता है हर एक प्रोजेक्ट, चाहे वो भैंस का हो या फिर मुद्दे का हो, नंबर वन वाला सबसे पहले आगे जाके यू नो तलवार पकड़ता है. अगर आपका लाइफ पाथ नंबर वन है, अगर आप अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करोगे और अगर आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ भी नंबर वन आ रहा है, दैट मीन्स योर सोल पर्पस इज टू लर्न सेल्फ मास्टरी, बिलीव इन योर ओन कैपेबिलिटीज एंड एम्ब्रेस योर इंडिपेंडेंस. ओके, चैलेंजेस क्या होते हैं? ओकेजनली हम ओवरली डोमिनेंट हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, या फिर जब ऑपोजिशन की बात आती है तो हम उसको कम्बैट बहुत ही फिरोशियस ढंग से करते हैं, जहाँ पे हमें डिप्लोमेटिकली करना चाहिए. सो द बर्डन ऑफ बीइंग द फर्स्ट कैन आल्सो लीड टू लोनलीनेस एज वेल, यू नो, व्हेन यू बिकम द पेटर फैमिलियर, जिसको कहते हैं आप सबका करता धरता जब बन जाते हैं और जब आपके ऊपर कुछ बारी आती है तो आपको लगता है कि आप इतने ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, और उसकी वजह से थोड़ा सा खालीपन, यू नो, वैक्यूम, ये सब महसूस होता है. दीज आर सम ऑफ द ट्रेट्स ऑफ नंबर वन. टेल मी इफ यू हैव गॉट अ नंबर वन टू योरसेल्फ और यू आइडेंटिफाई विद ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आई हैव स्पोकन अबाउट. लॉकडाउन नाउ, रूप कुमार राठौड़ की आवाज में. द फिल्म इज अ कैरेक्टर एंड द सॉन्ग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस. द ट्रैक इज दिल को तुमसे प्यार हुआ आपके साथ अंटिल 5. आप सुन रहे हैं द बिग लाइफ उज्जवल खन्ना के साथ ऑन बिग 106.2.

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता
2: कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: एक 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Al Mayrid, Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network.
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
1: Listen to her every day.
3: Mugembo! खुश हुआ।
4: सुना मैंने, ड्राइवर रुके, कल हम एक जगह गए जहाँ पे पार्किंग बहुत ट्रिकी थी। अब मुझे बेसिक एंगल पार्किंग और गराज पार्किंग आ गई है, पैरेलल अभी तक मैंने अटेम्प्ट नहीं करी है, बट उस जगह की पार्किंग बहुत ट्रिकी थी। तो पहले तो पार्किंग मिल नहीं रही थी, आई वॉज वेरी हैप्पी कि बेइज्जती नहीं होगी मेरी फ्रेंड के सामने। फिर मिल गई, एक बंदा जो है चला गया जब हम निकल रहे थे। मैंने 20 मिनट कोशिश करी, मेरी गाड़ी वहाँ लगी नहीं। तो एज ए न्यू ड्राइवर आपने ये पार्किंग एंग्जाइटी फेस करी है? मतलब गाड़ी चलाना स्टिल ओके, बट पार्किंग, स्पेशली न्यू पार्किंग्स, गिव मी अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी।
5: So what I usually do is just find a very open space. You don't have to like find between park spaces. Try to go for the maximum space you can get, because as a new driver you can face a lot of challenges with the angles.
4: कल तो बिल्कुल open space नहीं थी, वो packed जगह थी और पीछे तीन गाड़ियाँ खड़ी थी और वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैंने उनकी property में हिस्सा मांग लिया। Oh, it was so bad. I can't tell you, my friend had to stand outside. आगे करो, पीछे करो। I said बहुत बेइज्जती होगी, यहाँ से निकलो।
1: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
6: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्जवल on the Big Life. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: 101.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना चाहो।
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता
2: कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

मुमीना मुस्तसन की आवाज बिग 106.2 पे उज्जवल खन्ना के साथ. टाइम टू रैप इट अप. तेरा वो प्यार नवाज़िश करम. आई जस्ट लव दिस ट्रैक. एंड ऑल्सो इट इज टाइम फॉर मानसी टू स्टेप इन फॉर द बिग थ्रिल, द एक्साइटमेंट ऑफ द इवनिंग, द रज़मटाज़, द मैडनेस ऑफ योर ड्राइव बैक होम फ्रॉम योर ऑफिस आफ्टर सो मच दैट यू डिड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई. आई शैल सी यू टुमारो शार्प एट 2 फ्रॉम 2 टिल 5 ऑन बिग 106.2. कीप फॉलोइंग अस ऑन आवर इंस्टाग्राम. वी आर बाय द नेम ऑफ 106.2 बिग FM. एंड कीप ड्रॉपिंग इन योर feedbacks. If you want to follow me personally, MJ Ujjwal Khanna is my Instagram handle. That is MJ Ujjwal Khanna. The track is Ilahi. That's what I'm leaving you with. God bless you and your family. Stay safe, drive safe.

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. This is the Big Thrill right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. बहुत गर्मी है, but गर्मी में summer surprise आपके लिए एक family staycation है इंतजार कर रही है. And of course, आज शाम आपके पास मौका है shortlist होने का, open movie tickets, F&B vouchers जीतने का. But थोड़ी सी मेहनत करनी है, एक WhatsApp करना है BSS, अपना पूरा नाम 205-4309-1062. Also, 5 से 6 we play this fun game. It's called the 5-second rule. आपको मिलते हैं 5 second. मैं आपको देती हूँ कुछ categories. तीन चीज आपको बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर. रोज बोलती हूँ यार, आसान साउंड करता है नहीं. इफ यू वांट टू ट्राई, गिव मी अ कॉल. अगेन फ्री नंबर है 800-1062. आल्सो आज शाम आपके फोन की बैटरी आपके बारे में क्या कहती है. आर यू इन द 90-100% रेंज और यू डोंट बॉदर, मतलब 15% भी हो जाती है तो आपको एंग्जाइटी नहीं होती है. तो आपकी पर्सनालिटी बेस्ड ऑन योर फोन बैटरी. व्हेन आई कम बैक, किक स्टार्टिंग द शो विद

0: मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixo's Al Mayrid Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network.
2: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
3: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
6: 34 degrees feels like 44. What is happening, Google? It is very, very humid today. फिलहाल humidity है 65%, पर आज लो जाएगा अराउंड 32.
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, this is The Big Thrill. सबसे पहले काम की बात, the four letter word जो हम सबको बड़ा अच्छा लगता है, F-R-E-E, free, free, free, station आपका यहाँ इंतजार करिए, वो भी it's a family staycation, so that you beat the heat and style. Time for the big summer surprises, very, very simple to participate. WhatsApp call नहीं करनी है, UAE में नहीं चलता है, आपने सिर्फ एक WhatsApp करना है, 0543091062 हमारा WhatsApp number है, BSS, अपना नाम लिख के भेजना है, that's it. फिलहाल आज एक बड़ी कमाल रिसर्च मैंने पढ़ी कि आपके फोन की बैटरी परसेंटेज आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या बोलती है. सो इफ यू बिटवीन 90-100 प्रॉब्ली 60-80% या फिर आप उन लोगों में से हैं जो 15% से नीचे बैटरी जाती है तब भी आपको स्ट्रेस होती नहीं है. सारी डिटेल्स कमिंग अप, बट फिलहाल हम खेलेंगे द 5 सेकंड रूल. इज अ फन गेम दैट वी प्ले एवरी सिंगल इवनिंग. लाइक आई सेड, इट साउंड्स वेरी वेरी इजी, बट ये गेम इतना आसान है नहीं. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें आपने बतानी होती है फटाफट खटाखट 5 सेकंड के अंदर. अगर गाड़ी में बैठे बैठे लग रहा है ये तो लड्डू है, तो ट्राई करो. 800-1062 इज द नंबर. वी हैव गॉट करण औजला.

0: खाम खा डर रही है। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा,
0: गुस्सा आ रहा है। देखिए, ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, डर से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: गुड इवनिंग, यह बिग थ्रिल, मैं हूं मानसी। ऑन द फोन लाइंस अपना ब्लूटूथ एडजस्ट करते हुए मुकुंद। हाय मुकुंद, गुड इवनिंग।
3: गुड इवनिंग मानसी,
2: कहां से कहां जा रहे हैं आप?
3: मैं अबुधाबी से दुबई जा रहा हूँ।
2: अबू धाबी से दुबई या फिर दुबई से शारजा। फिलहाल मुकुंद विल प्ले द 5-second rule, it's a fun game. आपको मिलेंगे 5 सेकंड। मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी है। ऑल द वेरी बेस्ट।
1: 5-second rule.
4: Oh yeah.
2: तीन गुज्जू डेलिकेसीज डिशेस का नाम बताएं।
3: और
2: वेरी नाइस, ऑलमोस्ट देयर। क्विकली नेम तीन करीना कपूर की मूवीज। मेरा दिल प्यार का दीवाना, करीना कुछ कुछ होता है मैं। आई हाय हाय हाय, खत्म हो गया मुकुल।
3: टाइम
2: ओ मेरे भाई, टाइम खत्म हो गया। 5 सेकंड में बताना है। तीन ऐसी चीजें जो ग्रीन कलर की होती हैं, आप खा भी सकते हैं। अरे अरे अरे अरे अरे, मूविंग ऑन। तीन ऐसी चीजें जो शादी के बाद मुकुंद तुम्हारी जिंदगी में बदल गई हैं।
3: टाइम पे आना, झूठ नहीं बोलना।
2: टाइम और एक सेकंड, क्या बोला था पहले? टाइम खत्म हो चुका है। टाइम पे आना,
3: टाइम पे घर आना, जो मैं पहले नहीं आता था जब भी मैं मतलब मॉम डैड के साथ रहता था। यहाँ पर दुबई में मेरे को टाइम पे टाइम आना पड़ता है, 140 की स्पीड से चलाना पड़ता है और टाइम पे पहुँचना पड़ता है।
2: जब टाइम पे नहीं पहुँचो घर पे, तो फिर बहाना क्या देते हो?
3: मेरे को टाइम पे पहुँचना ही पड़ता है, वरना घर पे खाना नहीं मिलता है।
2: देखो यार, जितनी भी बीवियां सुन रही है, चाहती हो कि अगर हस्बैंड टाइम पे आए तो खाना देना बंद कर दो रात का, तो वो अपने आप टाइम पे आ जाएंगे।
1: 5 second rule.
4: Oh yeah.
2: मुकुंद बहुत ही खराब खेला आपने, बहुत ही खराब, बट बड़ा मजा आया आपसे बात करके।
3: थैंक यू।
2: यही है 5 second rule, आपने खेलना है। की रूल है, फोन उठाओ, नंबर घुमाओ, 800-1062।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Insuresmarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, yeah, Big Thrill, Mansi, and we're decoding your personality based on your phone battery percentage right now. Priya, Priya, tumsa nahi koi Priya. Aur kaun sa gana tha yaar? Priya pe ek aur gana tha.
3: Yeah.
2: That I sang. That is from kahin pyar na ho jaye. There's another one. Oh, Priya, Priya, dil, tune something kiya. Wow, Priya. अच्छा प्रिया जी, मुझे एक बात बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में आती हैं? आपकी फोन की बैटरी यूजुअली कितने परसेंटेज पे रहती है?
3: I am from the 90 to 100%.
2: Yeah, Miss Responsible. You will never lose your keys. You are a perfectionist.
3: Super, super responsible. वो कभी कभी कर्स हो जाता है, you know?
2: अगर आप परफेक्शनिस्ट बॉस हो तो आपके एम्प्लॉइज के लिए 100% कर्स है. बट प्रिया, यू नेवर फॉरगेट योर पासवर्ड्स आल्सो, राइट?
3: नो,
2: देखा, आई लव दिस रिसर्च.
3: नो, माय ऑल माय क्रेडिट कार्ड नंबर्स, माय बैंक अकाउंट नंबर्स, माय पासपोर्ट नंबर्स, ऑल दोस ऑल्सो आई नो बाय रोट.
2: दिस रिसर्च इज बैंग ऑन देन.
3: And then I never claim that I am good with numbers. But these numbers I know very well.
2: But then a dropping battery icon definitely gives you a major anxiety. You carry a power battery always.
3: I just make sure that my phone is always charged. I have a car charger. That's it. That's all I work with. But
2: तो कभी ऐसा हुआ है कि चली गई है like 60-40 के नीचे 25?
3: Of course चली गई है. But I make sure that I plug it back in, you know.
2: Again. Intelligent and intellectual, because 90 to 100% battery.
3: Yeah, it's not. I don't.
2: I am actually the same.
3: But definitely, I'm not dumb.
2: See, you and I are both very intelligent. I'm the same. I may not sound that I'm a perfectionist, but I am. I get very, very anxious. I carry two power banks with me. There's an aux cable gaadi mein. I don't know. Something happens. Agar phone ki battery idhar udhar hoti hai. And who, yaar, main. किसी ने मेरी कभी नहीं उठाई जिम्मेदारी, पर मैं बहुत जिम्मेदार लड़की हूँ. फिलहाल प्रिया, we will play the 5 second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. तीन चीजें बतानी है 5 second के अंदर.
1: 5 second rule.
4: Oh yeah.
2: तीन बॉबी देओल, लॉर्ड बॉबी की मूवीज.
3: बॉबी देओल मूवीज. Soldier.
2: Oh nice.
3: Animals.
2: Time finish. Name three things that start with the letter A and are edible.
3: Apple,
2: nice.
3: Apricot.
2: Very good.
3: Anar.
2: Okay, given. Teen Bollywood gaane jinme dil aata hai. The word dil.
3: Dil hai ki manta nahi. Dil kya kare?
2: Okay.
3: And tune dil diya sanam.
2: Tune dil diya sanam, what? Ye kaun sa gaane?
3: That title song.
2: Which title song?
3: Until they
2: chuka tha. Time khatam ho chuka tha. Acha, three qualities about your co-workers that you'd like to change.
3: Coming late, dress up properly.
2: Yes.
3: And don't take a long break.
2: Are you the HR? Or are you the boss?
3: No.
2: You are such a employee of the month, of the year, of century. I think any company would be lucky.
3: मैं बहुत बोली भाली employee.
2: पता है क्या है कि मुझे लगता है HRs को ना, अब आगे से जब interview हो, evaluation हो, जिसने भी अपने phone की battery 90 से 100% रखी है, वो 100% आपके office में भी बहुत जम के दिल लगा के काम करेगा.
1: 5 second rule.
4: Oh yeah.
2: प्रिया और मैं दोनों example है. प्रिया खेला बहुत खराब ये गेम, बट वाज लवली टॉकिंग टू यू.
3: सेम हियर मंथ.
2: यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय.
3: Yeah,
2: 5 second rule. And साथ में मुझे बताओ कि आपकी फोन की बैटरी आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या बोलती है. कितने परसेंटेज पे आप अपने फोन को चार्ज करते हो, या फिर यू आर द वन जिसे फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब इट डजंट मैटर 10% से नीचे भी चली जाए तो.

0: Wow, your hair color looks stunning.
1: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
0: Yeah, right.
1: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
0: Really?
1: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
0: I'm buying it right now.
1: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
2: The Big Mix. Weekdays, 10 a.m. to 2 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. Missed your morning buzz? Yes or no?
3: दिल्ली वैली से कितनी गालियां सीखी हैं।
4: एक फनी इंसिडेंट है इसका। वी वर डूइंग बीएससीआईटी दैट टाइम और हम फाइनल ईयर में थे एंड वी हैड बुक्ड लाइक आफ्टर वाचिंग द ट्रेलर्स वी हैड बुक्ड द फर्स्ट डे फर्स्ट शो एंड इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो भी मॉर्निंग शो था अराउंड 9 AM शो एंड एट दैट टाइम मुंबई यूनिवर्सिटी यूज्ड टू डिक्लेयर द रिजल्ट इन द नाइट एंड ऑल ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लाइक 7-8 फ्रेंड्स हु वी हैड बुक्ड दिस टिकट एंड बुक्ड द एडवांस टिकट We all got KTs in our papers and the result was declared just one night before. So we were very afraid ki abhi ghar pe kaise bolna hai, movie to kuch bhi karke jaani hai. And then I said to my mom that I flunked and mom was like, तो मॉम ने वो बहुत खरी खोटी सुनाई कि तुमको अभी भी मूवीज देखनी है ये करना है वो करना है बट स्टिल वी ऑल वेंट फॉर द मूवी इन द मॉर्निंग
3: और डेली बेली पिक्चर चल रही है उसमें इस वाले गाने का जो इफेक्ट है आप लोगों के लिए ऑल यू केटियर्स उसका इफेक्ट एकदम इनटू 10 हो गया होगा
2: Energy and action. Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली
6: है कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट
7: बाहर का तापमान इस 34 लो जाएगा अराउंड 32 वेरी ह्यूमिड दो फिलहाल ह्यूमिडिटी है 71% पर
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: आज शाम को वी टॉकिंग अबाउट कि आपके फोन की बैटरी परसेंटेज आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या बोलती है। इफ यू आर बिटवीन द 90-100% रेंज, मतलब आप हमेशा अपने साथ पावर बैंक रखते हैं, कभी भी 90-85 बैटरी होने नहीं देते हैं, देन यू आर परफेक्शनिस्ट काइंड्स। आप काम टू द टी करते हैं, आपकी चाबियां कभी घूमती नहीं है, आपको अगर किसी ने डेडलाइन दी है तो आप उसके एक घंटा पहले जो है काम सामने वाले को दे देंगे। इफ यू आर इन बिटवीन लाइक से 80-45%, देन यू आर a little relaxed, you trust the process, but you also take a little stress and then you say chaddo. उसके बाद अगर आप आते हैं एकदम 15% इन बिलो, मतलब आपको पड़ी ही नहीं है, जो हो रहा है होने दो, हमें पड़ी ही नहीं है। फिलहाल रमन, आप किस कैटेगरी में आते हैं?
2: मन जी, हम तो 100% वाली में है, बैटरी चाहिए पूरी।
1: अब मुझे लगा था आप 15% से निकाले हो गए, मतलब हमें पड़ी ही नहीं है, रिस्क लेंगे लाइफ में। ऐसी एनालिसिस है मेरी, बट अगर आप 100% रखते हो तो अच्छी बात है। तो अगर कभी चार्जर नहीं हुआ या कितने परसेंट पे रमन बैटरी चली जाती है, घबराहट होने लगती है कि नहीं यार अब इसे चार्ज करना जरूरी है?
2: 70 नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में।
1: वो
2: 70 नहीं होना चाहिए जी, सारा दिन फोन चाहिए।
1: ये आपने बहुत सारे अकाउंट्स खोल रखे होंगे इसलिए आपको 70% चाहिए।
2: अकाउंट के बारे में जरा खुलासा करें, आप कौन से अकाउंट की बात कर रहे हैं? आप
1: समझदार हैं, आप 100% बैटरी वाले हैं तो आप समझ गए होंगे मैं कौन से अकाउंट्स की बात कर रही
2: हूँ। मैं तो समझ गया हूँ ना, बाकी सुनने वाले वो कंफ्यूज हो जाएंगे।
1: समझदार के लिए इशारा काफी है। बट कभी ऐसा हुआ है रमन की बैटरी जो है वो एकदम 15-20% हो गई, आसपास चार्जर नहीं था?
2: ऐसा मैडम हुआ कि मैंने रात को फोन चार्जिंग पे लगाया और चार्जर में वो नहीं लगा, गलती से स्विच ऑन करना रह गया, सुबह उठा तो 15% दिमाग खराब।
1: 15% दिमाग खराब ना, इट इज रिलेटेबल। अगर आप रात को चार्जिंग पे लगाओ, सुबह उठो, देखो बैटरी लो, देन पूरा दिन खराब हो जाता है। सो आई काइंड ऑफ अग्री कि बैटरी जो है अगर 70 के नीचे जाती है तो मुझे भी लगता है कि हाँ भाई चार्जर कहाँ से चार्ज करना जरूरी है। तो आप हैं सर रिस्पॉन्सिबल, इंटेलिजेंट, डेडलाइन के पहले काम फिनिश करने वाले अकॉर्डिंग टू दिस साइकोलॉजी?
2: वो तो मेरी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि काम टाइम पे खत्म होना चाहिए किसी भी हालत में।
1: तो आप कभी अपनी चाबियां भी नहीं भूलते होंगे?
2: चाबियां मेरे पास दूसरी गाड़ी की भी जो नहीं यूज कर रहा हूँ उसकी भी जेब में है।
1: पासवर्ड भी याद रहते होंगे?
2: पासवर्ड सारे याद है, मैंने सभी का एक ही बना रखा है इसलिए कि पासवर्ड भूलू।
1: वेरी नाइस, सबको गुड मॉर्निंग जो लाइन से भेजते हो फोन चार्ज करके, वो भी रहता होगा। बट थैंक यू सो मच रमन। इस वक्त कितनी बैटरी है फोन की?
2: इससे हमारी है जी 85।
1: वेरी नाइस सर, फटाफट चार्जर ढूंढो, मतलब बात कर ली मुझसे
2: इतनी देर लगा हुआ पावर लगा
1: हुआ। चलो जी, यू हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट इवनिंग, थैंक यू। देयर इज आल्सो पोल अप ऑन आवर इंस्टाग्राम, लेट मी नो कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, अंडर 15% या फिर यू आर समवन हु ट्रस्ट द प्रोसेस, 50-80% तक आपकी बैटरी रहती है, या फिर आप 90-100% वाले हैं? लेट मी नो, 106.2 बिग एफएम, दैट्स आवर इंस्टा हैंडल।
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Moment at it, oh.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, दिस इज द बिग थ्रिल। इतनी हिचकी आ रही है ना मुझे, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दिल से मुझे याद कर रहा है। आजकल जितने भी लोग मुझे दिल से याद करते हैं वो तभी करते हैं जब वो बैठते हैं दो लोगों के साथ बुराइयां करने के लिए, तभी हिचकियां आती हैं। अगर कोई दिल से आपको याद करता है तो वो थोड़ी ना आपको तकलीफ देगा। हिचकी इज डेफिनेटली समथिंग दैट आई डोंट एंजॉय, नोबडी डज, बिकॉज कितना पानी पियो, कितना ऊपर देखो, वो तभी रुकती है जब लोग आपके में बारे में बात करना रोकते हैं, तभी आपकी हिचकी रुकती है। ये ऐसी एक बात है जो मैं बचपन से बिलीव करती हूँ। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई ऑलवेज फेल्ट आर ट्रू, जैसे कि अगर मेरे ऊपर से कूद जाओ तो मेरी हाइट कम हो जाएगी, या फिर अगर मुझे हिचकी आ रही है तो चार लोग मिलकर जो है वो मेरे बारे में कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दैट डेफिनेटली इज समथिंग दैट आई ग्रू अप लिसनिंग टू, एंड इट इज समहाउ इन माई हेड विदाउट इवन एनी एफर्ट। फिलहाल गर्मी में बहुत है तो आजकल मैं भी खुद अपने बारे में भी बहुत कुछ सोचने लगी हूँ, ओवर थिंकिंग बढ़ गई है गर्मी की वजह से। और अगर आपको लग रहा है कि अरे बस गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो ये शुरुआत है, असली गर्मी परसों से शुरू होगी। अकॉर्डिंग टू द वेदर डिपार्टमेंट 3rd of July से ऑफिशियली गर्मियों की पीक हम महसूस करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू लास्ट अंटिल द 10th of August। सो एक्सट्रीम एक्सट्रीम हीट coming our way in just one day. Filhal, you can beat this heat and style with a big summer surprise. When I come back, your chance to win a family staycation. In fact, aap shortlist honge. Open movie tickets, Ashram aap jeetenge with F&B vouchers. And itni mehnat main aapke liye kar rahi hoon. Aapko ye jeetna hai to sirf itni si mehnat karni hai. Send me a WhatsApp, BSS, your full name, to 0543091062. Also, mujhe batao, hichki aati hai to koi pyaar se yaad karta hai, jo meri mummy ne sikhaya ki koi baith ke rishtedar burai kar raha hai, isliye hichki aa rahi hai. Aap kis pe yakeen karte ho? Wo bhi batana, 800-1062 pe.

0: बॉयज, मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी।

0: 30,000 Google
1: the
0: reviews
1: thrill
0: with a 4.8 star rating.
1: On Big 106.2,
0: the story of trust
1: of Bollywood.
2: Good evening, this is the Big Thrill. And thrilling and exciting part ye hai ki right now is your chance shortlist hone ka for this stunning staycation. The property is amazing. It is Rixos Almiri in Russell Khema. Beat the heat in style, chill by the pool. अच्छा खाना खाओ, अच्छा गाना तो हम आपको सुनाते ही हैं. जस्ट इंजॉय योर स्टेकेशन, टेक दैट ब्रेक विद योर फैमिली. एंड फॉर दैट यू नीड टू रजिस्टर. अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप नहीं किया है, 0543091062 इज आवर व्हाट्सएप नंबर. BSS, दैट इज बिग समर सरप्राइजेस, योर नेम टू 0543091062. वी विल प्ले अ फन गेम हियर. यू विल बी कंपीटिंग विद समवन. इट्स कॉल्ड द वेकेशन वर्ड गेम. सो आई विल गिव यू अ फ्यू वर्ड्स, ऑफ कोर्स रिलेटेड टू वेकेशन, हॉलीडे, समर्स, एंड देयर विल बी फ्यू मिसिंग लेटर्स. आपने मिसिंग लेटर्स जो है वो पहचान के वर्ड बताना है मुझे. एंड इफ यू मैनेज टू डू इट, देन 100% आप शॉर्टलिस्ट तो हो रहे हैं. यू आर ऑल्सो वॉकिंग अवे विद ओपन मूवी टिकट्स courtesy of Vox Cinemas एंड F&B vouchers. सो गेट सेट मैसेजिंग.
1: Participate in the Vacation Word Game Contest and win a family staycation. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos Almiri Ras Al Khaimah.

0: Hollywood. When your skin feels good, confidence follows you everywhere. At Zuleika Hospital and Medical Center, our dermatology experts treat everything from acne, pigmentation and hair loss to skin allergies and aging concerns. Get healthier and clearer skin that looks and feels natural with our exclusive and affordable dermatology packages. Zuleika cares for your skin, for you. Call 600-52442 to book your appointment.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: InsuranceMarket.ae 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. InsuranceMarket.ae.
4: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
0: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: Still big traffic अगर आप शेख मोहम्मद बिन जायद पे हैं, मतलब मर्डर टू मोहिसना, इट्स अ बिट स्लो मूविंग, अ 30-minute डिले, देयर इज अगेन अ 45-minute डिले अगर आप शेख जायद पे हैं, डीआईएफसी बिजनेस पे, डेरा के अगर आसपास हैं तो काफी स्लो मूविंग, इट्स काइंड ऑफ बम्पर टू बम्पर, डेरा, बुहेल, रिगा रोड, फहीदी, ऑल पैक्ड एट द मोमेंट। जुमेरा 1 पे भी आपको ट्रैफिक मिलेगा ऑन द जुमेरा रोड, देयर इज ऑल्सो पैची ट्रैफिक दैट आई सी इफ यू गोइंग टुवर्ड्स स्पोर्ट्स सिटी एट द मोमेंट। एनीथिंग एल्स यू'ड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर।
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. Big.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

है नीम के पराठे। एग्जैक्टली, लिटरली नीम के पराठे। अब अगर आप थोड़ा सा नेचुरोपैथी में बिलीव करते हैं तो नीम के बहुत सारे फायदे हैं, बट अगर आप नीम को पराठे के अंदर आधा किलो घी में खाएंगे तो उसके फायदे मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे, बट ये वीडियो बहुत कमाल है, डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। गूगल नीम का पराठा।

0: बॉलीवुड
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
3: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
4: It is 33, लो जाएगा अराउंड 32, बहुत ह्यूमिडिटी है फिलहाल, इट्स 64% पर। एंड मैंने कहा ना परसों से असली गर्मी शुरू होगी, ये ट्रेलर था।
3: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Hanji, this is the Big Thrill. Mansi, the weekend is almost here. Can't wait. मतलब हर weekend और weekend के बाद आने वाले weekend का हम इंतजार करते हैं. But there's something that I enjoy doing these days is playing board games with my friends. And I head to Unwind Cafe. मेरे घर के भी बहुत पास है. It's a lovely, lovely, lovely place. So if you're looking for a place to unplug, play and connect, then Unwind Cafe it is. UAE's first board game cafe. 1000 से भी ज़्यादा games हैं. All under one roof. Remember गर्मी की छुट्टियों में कैसे हम बोर्ड गेम्स दोपहर में खेला करते थे. इट्स एग्जैक्टली द सेम वाइब बट विद ग्रेट फूड. दिस पिज्जा, बर्गर्स, अमेजिंग शेक्स, कॉफी, सब कुछ है. अनवाइंड कैफे द परफेक्ट स्पॉट फॉर फैमिली टाइम, कैचिंग अप विद फ्रेंड्स, बर्थडेज, गेट टुगेदर्स. अनवाइंड गेम मास्टर्स डेफिनेटली ट्राई करना बनता है. दे विल हेल्प यू पिक अ गेम एंड गेट यू प्लेइंग इन मिनट्स. दे हैव गॉट एपिक मर्डर मिस्ट्री डिनर्स, ट्रेडिंग कार्ड टूर्नामेंट्स, पार्टी पैकेजेस भी अवेलेबल है. देयर इज ऑलवेज समथिंग एक्साइटिंग एंड फन हैपनिंग एट अनवाइंड कैफे. तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए अभी विजिट करो unwindby.com.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. This is the Big Thrill of Mansi. And if you keep saying ki yaar bahut garmi hai, bahut garmi hai, it's not that hot yet. UAE's most intense summer stretch begins day after, that is 3rd of July. Yes, 3rd July se UAE enters the hottest time of the year. And temperatures jo hain desert areas mein around 50 degrees tak jayenge. So it usually, we know, begins in mid July and marks a 40 day peak of summer heat. And this is going to be the epic history mein. Every single year जो हम एक ही डायलॉग बोलते हैं कि हाँ बहुत गर्मी है तो इंटेंस समर हीट अभी शुरू नहीं हुई है, कल का दिन बाकी है, परसों से आप इंटेंसिटी ऑफ द समर फील करेंगे. वैसे ही बहुत गर्मी है, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी पियो, माहौल बाहर का गर्म है, खुद को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मी में ना गुस्सा भी ज़्यादा आता है, आप इरिटेट ज़्यादा हो जाते हो. तो पानी पीते रहो एंड बस बातों को इग्नोर करते रहो, दैट्स द वे टू बीट द हीट दिस समर.

You know, people who don't know me personally, I am a very, very darpok person. मैं बहुत डरपोक हूँ, to be honest. मैंने I don't remember last time horror movie कब देखी थी. मैं देख ही नहीं सकती हूँ. मैं दिन में light लगा के भी नहीं देख सकती हूँ. So मैं जब स्टूडियो में होती हूँ ना, गाने फुल वॉल्यूम पे सुनती हूँ. आई एम इन द जोन. एंड यूजुअली बाय दिस टाइम एवरीवन लीव्स एक्सेप्ट आवर ऑफिस बॉय, एंड ही डजंट स्टे इन द ऑफिस एंड ही गोज आउटसाइड फॉर हिज डिनर. Randomly, I was listening to the music. The door of the studio opens. मैंने इतनी जोर से चिल्लाया, you have no idea. पूरी building को लगा होगा, पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है. तेरे प्यार में, तेरे प्यार नहीं, बट मैं ऐसी हूँ, मैं दिखती ऐसी हूँ, तो मजबूत सनी देओल. बट हूँ नहीं वो. याद है वो एक शो आता था जब हम छोटे थे, करेज द कावर्डली डॉग? बस वैसा ही हाल हुआ है जैसे ये दरवाजा खुला था अभी.

0: 106.2. The beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
2: हेलो बॉयज, मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको तीन डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स.
0: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2.

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. लव लोफाई एंड नाइट फील्स, योर साउंडट्रैक्स टू अनवाइंड, ओनली ऑन द बिग चिल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।

0: इश्क में
1: नो रश नो नॉइस जस्ट सोल सूदिंग म्यूजिक ऑन अ मूनलिट राइड. दिस इज द बिग चिल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग मिक्स वीकडेज 10 AM टू 2 PM ओनली ऑन बिग 106.2 ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae. Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: से पानी मत होश किए जा मुझे तो कोई खींचे तेरी ओ
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल Where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Thank you. Thank you. I would like to introduce my friend and a great musician, Ashwin, over here. Ashwin खुद बहुत अच्छे कंपोजर हैं. इन्होंने एक मराठी फिल्म का म्यूज़िक किया है, मैंने सुना है, और डॉक्टर एन राजम के शागिर्द हैं. और अगेन दोबारा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने अश्विन. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. थैंक यू.
1: द नाइट शिफ्ट, ऑल योर फेवरेट म्यूजिक, बिग 106.2.